0: 봐봐.
1: 벨라이 함바이 아우 아우 간게승 아 저도는 아 저라리는 나고 해야다 그러니까 아 노력부 제크르나 무슨 위동내로 아 그런 이마노 아우 승케브는 하리동이야 우이 하이노 동이야 우이 승 저도니노 이머전시 저라 파유 간게 아우 하이 난코 위동 마저라로고 승 세브리는 나고 저도는 할로
2: 할로
1: 에 람서고 다코노
2: फुंका हम भाई
1: ए बेलाई फुंका हम
2: यान कंपनी ओगुनि किजा रुदोनि भाई
1: दा कोन सहरी
2: किनि से सुबा मुन किना भाई असले से सुबा मानन का बेला के कोतर आमो जे आमो इसापन से कबोपन से जे नमे से सुबा मानी आमो सुबा मा मने मा ब्लैक कोतर मा जे मा नका के सुबा मा का जान बक सरांग मो हाचा
1: आओ आओ
2: तंग ने से कैसन नो अनु कुंग हमयांग तो का कै चनाम तो नो बा या कुंग कुन सुंगो अन अन मना रेगुला ये तिन जे सोमया पो बि पर प्लाइ तो ति ति नि नि ये बक ति ति ओने बिसि बा कते बा फाता उन का छम रका आ जरा तुई मका चम सा ता कि तिन ति ति ओ गते अन गे तो को सुन कले बरी खतिन बोरांग न नंग फ्राम तो सुन नि न मो
1: ขอมอชิมาเดดอไคจออาซาก็ตุนาตะกิเซดดีพอคนไหนมาโนโตติกินิกินาตรอไคนังตอกาจิคไนนอกาไคอารอตวยมะเกตบอซินิบกาโนเนตาตะบอสรันตาเกชะงามอนบอตุนาบอกะตุเยนะตะมุตวยบอตองอซินไคชินชัดปาราคาซักตองซัดปาราวอซินปาราชินิทาติปาโอลวาตองออาชาปาราวอซินมารุมเชซาเอรังคอนซอสเตอไคเลเรเตมอไคเลเลจองกะซึ
3: Dada, bela ke hamko?
2: Okay.
1: Okay.
4: I'm going to go to the house.
1: Selai ya? Bahagia selai nai?

गुबुन सालो गोरों लायफिनाय जरा बेलाय खजर जा बेलाय हामबाय आहो गांगाय मारे किसिं सं जरा थांगि दङ तुरुक तुरुक बिनि थायो अंकै नरक आनि लगे तङै तङा सुजरा बेलाय हामबा सुजरां तमनि नरक बायदि काश्मीर.

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब?
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: आकाशवाणी आगरतला, এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্রের ইংরেজি সংবাদ।
4: Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI proves record surplus transfer.

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: मार्केट ट्रेंड
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर में
4: पहले ही बोला था ब्रो
2: माय प्रेडिक्शन इज
5: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
2: मेरे दोस्त ने बोला
6: देवी जी की सुनो
7: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
9: 101.6 মেগাহের্জ এফএম উজ্জয়ন্ততে রয়েছেন আর রয়েছেন তোমায় গান শোনাবো অনুষ্ঠানে আমরা কিছু মিষ্টি মধুর গান শুনছিলাম।

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।

आओ खबरने मारखिसिंग तबुकनी ज्वार नंखा सिंह कॉकब्रोक न्यूज हेडलाइंस खाना लाइनानी।

आओ खबर ने मारे किसी नरखनाई तो सरसा पॉइंट डॉक मेगा हार्जो एफ एम उज्जैन तो खपांग याख्राई पाना आओ नाइन एन कक दुगो सब तंग फीओ जोराव हेलो हेलो हेलो सागर दी सब

0: आओ नाइन एफ सीवन हाइके हजर कक दुगो स्वागत हेलो
1: हेलो
0: आओ दीपर कहाम आओ सागरा दी ओ पंचलखी बजागानी सुनाम ठाकुर बिहान गाबो गाबर दी सुनाम ठाकुर नि पंचलखी द सागरा दी हाइके
1: नंगी जैसा खाई गदम ने कक खाना खाना तब लगे

सामुं खोनार दिहोनायनाय सचिन्द्र हायखाबा सुखमयनि सामुं खोनार गार दिहोनायनाय हाखे अजर सचिन्द्र बायन रसाबजाक बन रसामुं तांसा बिन बागैन ओंग्रा सिदों आख अजर रसामुं तांसा सचिन्द्र बाय रसाबजाक काली करिखे

0: आव खाबुने मारखिसिं नरक नरकनि खना दगजांमानि रसामुं खनानानि बागैनि नरक आं बाय कक्दुकनि बिसिन्दै गोरों हरदि नायनाय नरकनि खना दगजांमानि रसामुं खनारावै नरकनि खानो तंथग्रुहै स्रांग्रुहै दा मानो नायनो आव नायनि गर्सन हाखियाव जराव कक्दुकौ साबतं हेलो हेलो हेलो सादि
1: दिपर कहाँ दरा
0: आओ दिपर कहाँ हम
1: हाय को ऐसा नहीं करता
0: सादि ऐसा बोर समुंग खनान मुझुंग सादि
1: हाय को कैसे खनाने दरा ये को विष्णु ने ये को नेगमो वाले माना
0: बोबो दो साला
1: ये को ताकाब से निमुक्ति हुदा चली माता
0: ओ
1: नेगमो मने जी बुरी बात माता
0: ताकाब दी हिंमन अब ना ताकाब दी मुक्ति खुदी माने ना अंकल
1: अंकल एक ना ड्यूटी करते नहीं तरह
0: दा दा खाई
1: ये कौन दारा बिरजे दारा बिजुस दारा रविंद्रा के नाना उन्हें लकी बाईस मित्रा बाईस जो बाम सुना तरह
0: बाह मौकों ले मुक्ति होना मुसुंग खाता नंग कार ना मुसुंग लिया ना
1: Indara.
0: Dah, dah. Kaham. Ih, belai di esan, bor samung kananan baginya kobok harka. Bishonat bayar sabjag samung tangsa. Asik tak kabdi, dak tino thakdi. Or samung no, botai dedicate klaya, bini khasuk sasung no, bini.

ओंनाय फियाबा ओ अमर कासुगे सिनिनो कायजांनायसा ओ ब्रै गांखाबा ब नग नुखुं मा खामानि बागै अमर कासुगे सिन सखांनो बिनि अग चराय चुनाय ताय बसे तरि तंमानि बागै नाय बसे भिटामिन चामुं हायका प्रोटीन रग नाङै तंमानि बागै नाय बसे चराय चुनानि माचुखा अग हंके बिनि साखनि बागै बेलायखे हामियांगो ताय चराय ओंमावै बाक्सा नग नुखुंनि सामुं हुं बमा नायसिनाय ग्रा ग्राजों संना मा नायसिनाय ताय अम हायखेनो बिनि लांमा बा नगनो खाजागै थांसिनाय हायखे ब तामंसिनाय दाक्तिनो बोरिसे गोङै थानाय हायदिबा साख हामिया ओंनाय बिनि मारे संग्राबाय मालाखे हांखे लासिनाय बनि बागैनो खाफुंनि मारे गिसिं ओ चाइल्ड मेरियस हायखाबा सरायनो कायजाक मानि कायलाय मानि अमनो कासुनानि बागैनाय गोबां जरावनो गोबां केरं दै याप्रि नाजाखा आबरुनि बिसिङो दङ प्रहिबिशन अफ चाइल्ड मेरियस एक्ट 2006 अमनि नाहार मानिनो नाहार मुं ओंखा अमनो कासुनानि सरायनो कायलाय मानि अमनो कासुनानि ताय कायनाय रक्न कायनाय रक्न बरक्न माजरा रनानि ताय औ कायजाकनाय आ बोरै बोसानो कासुनानि ताय बन तंकसं हायखाबा तंकाहामो हायनो हाय तुबुनानि बन रों सोरोंनानि सेब रनानि ओंखे जों सायमानो ताबुक बोरै बोसारक ताय सेला बोसारक कायजाकनानि उमर बोसोगनानि नां नखा बिसि चिसार नखा बिसि चिसार हायखाबा 18 years 18 बसरनि स्लाय सोगां कायजाखा हांखे आबुनो नहनो चाइल्ड मेरियस तमुनो अमहैख्लै कायजागै तंखा हांखे आबुनो नहनो चाइल्ड मेरियस ताय अमहैखे सराय उमर कासुगिया सक्सुगिया बोरै बोसारनो कायखा हांखे आबुनि मानथाय तामो सायदामान आबंखा नों जे कायनाय रक बुमा बफा होनजाखनाय रक हाय एखाबा सों ताबुक रायबार नि होनलायो रायबाय नि होनलायो रायबाय रक बहायनो बर्ग बहायनो आलंगो माहाबै मानो ताय जे कायनाय रमदि ताबुक रमदि पास्टर फनोंखा असाय फनोंखा जेसे फनों रसिदों आ कायनाय रक बहायनो बर्ग ब रमजाखनाय ओंखे जों ताबुक जराव सिनि त्रिपुरा हास्तियाव गोबां आमसायनो हायनो ओ जोराय हायखाबा अमर सक्सुयो बोरैनो कायमानि नुगै दङ अमन बागै बेलायखे किरमा सिनसा ओंखे अमनो कासुनानि बेलायखे नांसुखनाय बेलायखे नांसुगो अमन कासुनानि बागै मन बागैनो गोबां लामातै स्कुल आमसायरगो बहायनो बालिका मन सिनि संसार जाखा हायदिबा मिशन संकल्प निबो संसार जाखा डिस्ट्रिक्ट रगो अब सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम नि बिसिंतै अब संसार दङ अबनंखा अमहाके कायलेमानि अमन कासुनानि न नाहारैनो अमन याप्रि हाके खाबंनि मारे किसिं नरग रायबाय नानि सिकां नरग मावान सुखनाय ओ कायजाकनाय बोरै तायसेलानि उमर बोसोगोंखाना नरकमा जेरैमा नायनाय ताय बुमा बफा होनै होनजाखनाय रक नरक बहायनो नरकनि बोसारकनो उमर सकजुगे सिनि सेगां ता कायजादि तामनि होनखे अमहैखे कायमानिबाय बरनि हामजाथानि गेबेंमुं ओङै बाजैमानो ताय नरक तमुंनो कायखा हांगांखेले नरक केरंतै याप्रि नाजाखनाय नरक पेनाल्टी हायखाबा नर आलंग माहाबनाय हेदिबा हिंगा पास्टर हायखाबा असाय फनो हुंदि गबांग मा ताबुक पुजारी जे कायनै रक बहायनो आबुनि मानथाय बरक माननाय हाके नरनि आमजाय रगो तुमुंनो जराय बसा उमर सखजुगे बोरै बसा रकनो अमहाके कायमान रक नरक नुय तंखा हंके आव ओ स्कुल हायखाबा रंगनक रगो तुमुंनो बोरै बोसारनो कायनाय रनि खानाखा हांखे नरक नरकनि फोरोंनाय रकन' फन नरक सावै रैमानो सावै रैमानो हाखे ताइटामुं ख्लायनाय चाइल्ड हेल्प लाइन नाम्बारबो दङ'

खबरने मारकी सिंह खना तो खरांगने पाइथक रसामोंग सिंह खना लाख्या सान मनोनो विश्वनाथ ताई अनितानी खरांगो आओ हाइके ओजरो सिंह एफएम कोकबुरोग न्यूज हेडलाइंस नाइन लेकर शिवन मंत्री बखराव नरेंद्र मोदी तीनी वीडियो कॉन्फ्रेंस नी सेप बाय फिल चिचुकु रोजगार बानी को खरक चिबा साइनी कबांग कताल सेबोग मन्नाई सिक्ला रोगनो ऑफर लेटर या फार्मा पांदानो चेंगी रखा ताई आबनो रगई संसाजाग पांदा कोकना रखा केंद्रोनी स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह माउंट एवरेस्ट कप्लाई इंगमाबाई इंडो तिब्बत आरनी पुलिस रोगनो खाकाहाम याफारखा केंद्र रंगकसार नाइमथा रेमचेनई बोट आमजोंमुंगनी अंखारी ब्लाय स्कैन क्लाइजाक फोटोकॉपी जमा रमा पाइथाक साल ताइबो सालचा बारि रोय खनाजरा क्लाइजाखा बीजेपी नी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान सामुं बतांगनी बखागो तिनिन सिमी बीजेपी चुकु बनमालीपुर मंडलनी चेतनबाई सालनैनी फ्रोंमुंग शिविर चेंजाखा दलेश्वर

मिनी कुमार सिंह मेमोरियल रंगनगो संसाजाग ओ शिविर न सेंगी रेखा एम पी राजीव भट्टाचार्य आउ हाके ताफुजरानी एफ एम ककब्रक निउ सेटेलाइन्स खाना बाकिया हाके खापने मार्किसिं जराबो पाइसुका नरकनी किसिं आंकुंजबो अरनमा बासासिनाय नरक जत्न काहाम ग्रं तंबायदि तिनिन बागै आसंसिदों गुबुन सालम मालानिनि कग्रै अरन बासागारखा जतन न हामबाय।

0: इकबाल नाम है मेरा। वाह, लगता अल्लाह मियां के हुक्म से फरिश्तों ने महीने भर की छुट्टी लेकर बनाया आपको। क्या बात,
1: बदतमीज, तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी है।
0: हाँ मेरे साहब, ड्रेस तो आपका खराब हो गया लेकिन चेहरा आपका खिल उठा।

0: तुझे आर्मी ज्वाइन करनी है? बताया क्यों नहीं मुझे?
1: क्योंकि तू उस किस्म की लड़की लगती नहीं है जो आर्मी ज्वाइन करने वाले लड़कों को डंप कर देगी।
0: नहीं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन बंदा अगर मुझे अपनी दिल की बात ना कहे तो उसे डंप करने में मैंने 2 महीने नहीं लगने, समझ आई?

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: प्रॉमिस।

0: जीवन तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं।
1: भार्चुअल पान्त केन्द्रनि सय सिमुंताय तां सेब मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साखा आज मुंग बानेक बाय हाफांनि सेबुगो बरक तिलांमा बांमानि सिमिया अब सेबुगो बरक तिलांमा सामुंगो ब सराय सराय एंखा अबनि सिकां कायसिसार आज मुंग बानेकनि बिसिंतै खरकसि नै साय सेखनो सेबुगो तिलांमा लायकरां रजाखा तिनि केन्द्र हाफांनि जुदा जुदा ककसं लाइनक ताय मथानि कटाल सिथकजा खरक बासि सा सायनि ब गोबां नियाखौ सेबुगो तिलांमा लायकरां रजाखा हाफां कतरकुक गोबांकुक लुकुरक नायमा यासा ना बागै बिबिजि रामजि केरं नैसाय नैसिबानि खबजाक पुइला बेरेमनि रायदा बेति तिनि कारिखा कामि हामख्राय कक संलायनक साखा जे साबरक दायजाक गोरोंजाक ताय मथा बिसकां जुन तालनि नैसि सानि बिसिं अ पुइला बेरेमनि रायदा बेतिनि साखा कक कासमुं एबा कक बेति रैमानानो खुरसायमानो बिकसित भारत जि रामजि केरंनि नाहारमुं ओंखा एम जे एन रेगानि बिसाव सालसारा सामुंनि मान थायनो बांग्रै बिसाव सालसारा नैजि बाख्लायनानै अकेरं बोसखां जुलाइ तालनि साल पुइलानिसिमि हा कतर गोनांगै सामुंगो फोनांजागोन। मन्त्रि बख्रक नरेन्द्र मोदी ताय मार्किन बुइहा मन्त्रि मार्को रुबियो तिनि भारत आमेरिका कथायै सामुं तांना बागै बोखागताय आमचाय हा कतर फातारनि टंकोसां नायमोथांनो तैयै कक्लाम सालायखा दिल्ली कतालो संसारजाक सेबा तीर्थ कक्लाम सालायमाव बुइहा मन्त्रि डक्टर एस जयशंकरताय बसंनाय मोथां कक बकनाय अजित दुबाल मानजाखा मार्को रुबियो कुआव बुइहा मन्त्रि रपनि ककलाम सालायमाव मानजाखना बाखै न खास हालब्रै रमै भारत बेराय फाइमाव तंग खना ब जयशंकर बाय बखाक नैनि ककलाम सालायमाव आसगाना केन्द्रनि स्वराष्ट्र मन्त्री अमित शाह माउन्ट एभारेस्ट कासवै माननाय इन्दु तिब्बत आरि पुलिसनि पुइला बोरै हासु कासा नाय बदलनो हामबाया फारखा हदानि लामतै कक मुं खायसेयाव मोजां साखा बेलाय थां थगिया आमचायतै केबेंजाक नबार तैबारनि बिसिंग अबहाय सामुंसारै माननै आइ टि बि पि नि अ दल बायथांनि हामारिनि स्लाय सिगां हाकतर अ कक मुं न बरम रोखा हाकतर गोनाङै पेट्रल ताय डिजेल मरखा सालचिनि बिसिंग अब बायबाय थाम पेट्रल ताय डिजेल नि मरक मुं बांग्रे जाखा आगरतला पेट्रल नि मरक मुं बांगै लिटार थगै खक सारा नैताय पैसा लेब थामचिसा यां डिजेल मरक मुं बांगै लिटार थगै खक चकुसिसा ताय पैसा लेब नैजि थामंखा आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अकक तमा आवाय ख्लायजागै दंगु आकाशवाणीनि कक तमानि आपडेट माननानै बागै लग इन खालायदि www.newsonair.com निउस अन ए आइ आर एप ताय टुइटार बाय फेसबुक प्लेटफर्म ए आइ आर निउस एलार्स युट्युब नायदि निउस अन ए आइ आर अफिसियेल अबनकारिब आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि कक तमा आपडेट माननांखे टुइटार एबा एक्स हेन्डेल आकाशवाणी निउस आगरतला फेसबुक ए आइ आर निउस आगरतला ताय युट्युब आकाशवाणी निउस आगरतला नायना नांगोन। हास्ते हाफांनि डिग्री कलेज रगो बिसि नै साय नैसि दक नैसि स्नि रों बिसिअ ग्रेजुएट परिमंग बत्तिनि सामुं अ मेन्टालनि साल नैसि चुकुनि सिमि सेंगाना अ सालनि सिमि कुसुग्रों नायखुंनि सामार पोर्टालनि बिसिंते अनलाइन कयमंबोला यासाक मुं सेंग्रे जागाना कयमंबोलाय रोनानि पाइथाक साल जुन तालनि सालनि जरा पुइला खिपिअ बत्तिनि बागै रोंमारिनि मुंरेम खारि जागोना जुन तालनि सालचि चुकुअ पुइला खिपिअ रोंमारिनि बुमुं बोतांनो रोगै बत्ति ख्लायजाखोना जुन तालनि साल नैसि नैताय साल नैसि थामो फिल्डनि खिपिअ रोंमारिनि बुमुं बोतां खारि जाखोना सालनिसि ब्रै जुन अबन रोगै बत्ति ख्लायजाखोना सालनैसि बेनासिमि सालनैसि चुकु जुन जरा फिल्ड थाम खिपिनि रोंमारिनि बुमुं बोतां खारि जाखोना साल थामचि जुन फिल्ड थाम खिपिनि रोंमारिनि बुमुं बोतां न रोगै बत्ति ख्लायजाखोना जुलाइ तालनि साल पुइलाताय साल नै सालमारिव फिल्ड ब्रै खिपिअ रोंमारिनि बुमुं बोतां खारि जाखोना साल थाम जुलाइअ अ रोंमारिनि बुमुं बोतां न रोगै बत्ति ख्लायजागोना जुलाइ तालनि साल ब्रैनि सिमि साल दक सालमारि जरा कुसुग रों नायखंनि बोखाखते अ कक्तमा सावै मानजाखा उनकुटि हांखर आमचाय मियाताय तिनि फेरां ककजागै खरक थाम थैजाखा मिया कुमारघाट ब्लक आमचायनि लालछरि आमचाय फेरां ककजागै नारायण दे मुंगै खरक साथैखा कुमारघाट एसडिएम डेभिड एल हालाम साखा थैजानाय नारायण देनि नखुंनो खक नैसि सायखे रां सुबासु रोजाखा यां तिनि दिपर पेसारथलनि नबीन सर आमचाय नखुं खुंसानि खरक नै फेरां ककजागै थैजाखा थैनाय रकंखा सुमन्त चाकमा ताय मीना चाकमा महकुमा नायकल संनि बोखाखै अ थैजानाय नखुंन बेबागै खक ब्रिचि साय गोसारमा सातनि सुबासुनि रां रोजाखा

उनकोटी हाँक राम चाहिने किसा छेक आम चाह फेरा पामाने मानजाकमा का सुनामबा गई जाय जाय खेया प्रिरमजा खातिने उनकोटी हाँक नाइकल फांग मेदा मेघा जैन अकक शाखा बसाखा अवन तेये हजाक मुंग आवई मुंग आकरक बांग्रजाखा आशा कर्मी रक नक नक थांगई साखाम हजाक मुंगनी कक आवई तंगू कैलाशहर इमिग्रेशन चेक पोस्ट अक साखाम नाइखनी बखाकई हेल्प डेस्क आशोकरी जाखा गानानी हाकतर ने सिमी फाइमा जर आरिव बरकन साखाम आमजक जागई तंगू बीएसएफ नब अवनतई कहामखे मकल कायनानी साजाखा कक माथुम नायरकनी कक मालाई मुंग एनएसएम ने कथाजाग दागी फांग डाक्टर नकुल देवबर्मा हायंग साखाम मथानी सार्विलेंस अफिसर डाक्टर रणबीर रणदीप साहा सीएमओ डाक्टर सन्दीप भट्टाचार्य कसंग मानजाखा बीजेपी ने साक्थारमा बाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय फुरुमुंग कतरनी सामुंग बुतांग तीन निशिमी बनमालीपुर गुप्तारनी साक्थारमा बाई सालनी फुरुमुंग शिविर चेंखा दलेश्वरनी कामिनी कुमार सिंह मुकमु रंगनगो अफुरुमुन चेंगिरेखा प्रदेश बीजेपी कासको सांसद राजीव भट्टाचार्य बीजेपी बागमा गुप्तानी साक्थारमा बाई उदयपुर पंचायत राजफुरुंगमा केन्द्र तय काक्राबान गुप्तानी साक्थारमा बाई आरोनी डाइट कलेज अमहाई फुरुंगमा शिविर जोगाली जाखा तेलियामुरानी कवि नजरुल रेमचे नैरंग फुरुमा शिविर न चेंगीरेखा विधानसभा चीफ हुईप कल्लानी राय त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बाई कमथे जाक हास्टे बेरेमनी पीसीसी थाम उमर जरानी क्रिकेट बाटाई मुंगनी तीनी थमुंग कायबा अंखा रानीर बाजार थंखला सुनमरा उइकेट कायबा बाई मोहनपुरन मेचेनखा उदयपुर थंखला सदर बी दल उइकेट कायसुकु बाई आम्बासानो मेचेनखा मेलागर थंखल विशालगढ़ बासीसारान बाई खुआन मेचेनखा नेपकु थंखलाव संसार जाक थंमंग सदर ए बदल उइकेट कायसार बाय जिरियान मेचेन खाटाय बिलोनिया थंखलाव शांतिर बाजार दक्षिस निरान बाय साब्रुन मेचेनखा यांग धर्मनगर थंखलाव कमलपुरताय कैलाशहरनि थंमुं वाटैनि बागै कारै रोजाखा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बाय नाइकलजाक बुरी रकने अरनि क्रिकेट बाटाइमाव तिनि थंमुं कायब्रि ओंखा नरसिंहगढ़नि टीआईटी थंखलाव संसाजाक थंलाइमाव प्रगति प्ले सेन्टार उइकेट कायसनि बाय जीबी प्ले सेन्टार न नरसिंहगढ़नि पीटीए थंखलाव कर्नेल कोचिं सेन्टार उइकेट कायसार बाय विद्यासागर कोचिं सेन्टार न एमबीबी स्टेडियम मौसा क्लाब स्निसी थामरान बाय ब्राइट क्लाब न टाय मोहनपुरनि तालतला थंखलाव एगिय चल छंग सारा थामचिबा रान बाय बादारघाट कोचिं सेन्टार न मेचेनखा बस्कां दाम नैसिब्रै हास्टेनि बेबा खांखर आमचाय फेरांक गय वातै फाइमान खना सालनि तुंमारि साखो थामचिब्रै ताय खामाव नैसिबा डिग्री सेल्सियासनि गानागिनि तंगाना तिनि सालनि साखानि तुंमारि तंखा थामचिबा दशमिक ब्रै डिग्री सेल्सियास ताय खामानि तुंमारि तंखा नैसिस्नि दशमिक सुखु डिग्री सेल्सियास सारिकनि दाम बातामै छति थामचि जरा आगरतला वातै फाइखा थामचि दशमिक थाम दशमिक दक मिलिमिटार थामचि थाम दशमिक दक मिलीमिटार पारेना सिगां तीन कक्तमा बुबा रक्त हिसाबपुरु मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी हाकतर निशिक्ला हदन हामसाजाक भारत संसायती साना बागै तायब बारजा नावै ताय साखारै सामुं तांना कबक मुंना रोखा हाफां कतरकुक गोबांकुक लकुरक नायमा यासाकना बागै बिबिजि रामजि केरं नैसाय नैसि बानि खबजाक पुइला बेरेमनि रायदे बिति तिनि कारिखा हास्टे हाफांनि डिग्री कलेज रग बिसि नैसाय नैसि दक नैसि स्नि रों बिसियाव ग्रेजुएट परिमुंग बत्तिनि सामुं अ मेटालनि साल नैसि चकुनि सिमि सेंगाना टिसे बाय कमथिंजाक हास्टे बेरेमनि बिसिसि थाम उमर जरानि क्रिकेट बाटाय मुंनि तिनि थुमुं गायबांखा कक्तमा तिनि बागै अरन पाइखा उलनि कक्तमा आवाय एंगाना खोनाफुं दान्सनि तामै सति ब्रैजिव'

0: গানটা শুনলাম, মহুল বাবুর অনুরোধের গান, এবং এই গানটা দিয়ে আজকের মতো গানে আপকে লিয়া এখানেই শেষ করব। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ, এবং তারপরেই আবারও ফিরছি আমি আজকের আজ রাতে নিয়ে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে মুকেশ কুমার বল। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत, और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स

0: बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ साथ मैच

0: चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन

काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाउ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।